0: Something's changed with Mum lately. You're not sure what to do. She wants to stay home. She can, with the right support. We're a small, dedicated home care team. Nursing, personal care, overnight stays, post-hospital care. We can usually be there within the week. One call, no pressure. We'll work out her needs together. Call Santa Clara on 02-811-8121. That's 02-811-8121. Santa Clara Home Care, care that feels like family.
1: Station sponsor.
2: The Hills to Hawkesbury Community Newspaper is a family-owned and operated free community magazine. 10,000 copies are printed every fortnight and delivered to 75 different locations across the Hills and Hawkesbury areas. If you're unable to pick up a printed copy, there is free online access at hillstohawkesbury.com.au plus the newspaper's social media sites. The Hills to Hawkesbury team's aim is to inform, involve and inspire, which is why partnering with Alive 90.5 makes perfect sense. Station sponsor.
3: Alive 90.5.
4: Namaste aur aapka swagat hai wapas India Connect mein mere Veena Sashi Kumar ke saath aur Teachers Day ke messages ke baad hum padhenge kuch messages jo aaye hue hain fathers ke liye. To pehla set of messages hai betiyon ki taraf se apne fathers ke liye. To interestingly aaye hain तीन मैसेजेस बेटियों की तरफ से और तीन मैसेजेस बेटों की तरफ से. तो पहला मैसेज है जारा का अपने पापा के लिए. कहती है, हैप्पी फादर्स डे पापा. इंडिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक यू हैव बीन माय कांस्टेंट सेफ्टी नेट. व्हेनेवर लाइफ गेट्स ओवरवेलमिंग, आपका एक फोन कॉल और वो लाइन, टेंशन मत ले बेटा, मैं हूं ना, सारी प्रॉब्लम दूर कर देती है. थैंक यू, यू आर माय एब्सोल्यूट हीरो. दैट इज सो ट्रू जारा. Our fathers are our heroes forever. Dusra message aaya hai Rekha ji ki taraf se. Kehti hai, to the man who never said no to my education or my career, even when society had questions. Papa, your progressive thinking made me the independent woman that I am today. Distant chahe jitni bhi ho, my heart is always home with you. I love you, Dad. That is such a beautiful message, Rekha. और जो लास्ट मैसेज है वो है प्रिया की तरफ से. वो कहती हैं, हैप्पी फादर्स डे टू माय अमेजिंग डैड. आपने अपनी जरूरतें हमेशा पीछे रखी जस्ट टू फुलफिल माय विशेस. थैंक यू फॉर टीचिंग मी टू स्टैंड टॉल, स्टे ग्राउंडेड एंड वैल्यू आवर फैमिली ट्रेडिशंस अबाउट एवरीथिंग एल्स. हैप्पी हैप्पी हैप्पी फादर्स डे पापा. सो दैट is such a beautiful message, and really happy Father's Day to all the amazing dads jo parde ke piche silent kaam karte hain aur hame hamesha confidence dete rehte hain ki hum aage badh sakte hain aur hum jis jo chahe wo kar sakte hain. So thank you so much to all the amazing dads and the amazing heroes. You are our real time superheroes in our life. Thank you so much for doing everything that you do silently. ये conclude करता है ये वाला segment. तो इस message के साथ हम अगला dedication play करेंगे, लेकिन उसके बाद वापस आते हैं कुछ messages के साथ जो बेटों ने अपने पिता को दिया हुआ है. So say, stay tuned and come back after the song.

0: Looking for a fresh approach to real estate? At Bookfitch Estate Agency, we put people first, making the process smooth and stress-free. Whether it's selling your home, managing your investment, or finding your next move, we're here for you. Discover how property should feel professional, personal, and tailored to you. Visit us online at bookfitchestateagency.com.au or follow us on socials today.
1: Station sponsor. Adriano Coluccio Funeral Services is an Australian-owned and operated funeral home providing dedicated, dignified, versatile and professional funeral services, assisting community members in their time of grief and loss, regardless of ethnicity and religion. Our commitment and compassion is dedicated to setting the highest standard in funeral professionalism and supporting families through what is the most difficult time of their lives. Located in Smithfield and Miranda, servicing all Sydney areas, Adriano Coluccio Funeral Services, always with you. 9604 9604. Station sponsor.
2: टीकाकरण खसरे काली खांसी आदि गंभीर बीमारियों से बच्चों की रक्षा करते हैं अपने डॉक्टर से बात करके ये सुनिश्चित करें कि क्या आपके बच्चों को समय अनुसार सभी टीके लग गए हैं
3: Alive 90.5
4: नमस्ते और आपका स्वागत है वापस इंडिया कनेक्ट में मेरे वीना शशि कुमार के साथ और इस सेगमेंट में हम पढ़ रहे हैं मैसेजेस फ्रॉम सन्स टू देयर फादर्स तो पहला मैसेज है अमित जी की तरफ से ये कहते हैं हैप्पी फादर्स डे डैड दो सूटकेसेस में आपने आपकी पूरी जिंदगी पैक करके यू मूव टू ऑस्ट्रेलिया अ न्यू कंट्री जस्ट टू गिव अस अ ब्राइटर फ्यूचर वी नो इट वाजंट इजी पापा बट यू मेड इट लुक एफर्टलेस थैंक यू फॉर एवरी सिंगल अनस्पोकन सैक्रिफाइस अ वेरी वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे टू यू थैंक यू अमित जी दैट्स सच अ ब्यूटिफुल मैसेज दूसरा मैसेज आया हुआ है नीरज जी की तरफ से कहते हैं ग्रोइंग अप मुझे लगता था आप बहुत स्ट्रिक्ट हो स्पेशली अबाउट माय स्टडीज बट नाउ दैट आई एम अ पापा मायसेल्फ एंड आई एम स्टेपिंग इनटू दैट वर्ल्ड आई अंडरस्टैंड द इमेंस लव बिहाइंड योर डिसिप्लिन आई होप आई कैन बिकम इवन हाफ द मैन यू आर हैप्पी फादर्स डे पापा दैट इज अ ब्यूटिफुल मैसेज नीरज जी और जो लास्ट मैसेज आया है अपने पापा को पापा के लिए है रितेश जी की तरफ से वो कहते हैं हैप्पी फादर्स डे टू द मैन हु टॉट मी हाउ टू फेस चैलेंजेस विद अ स्माइल हाउ टू कीप माय वर्ल्ड और हाँ दुनिया के सबसे बेस्ट चाय कैसे बनानी है यू आर माय एंकर डैड चीयर्स टू यू टुडे एंड एवरी डे एंड आई मिस यू आई होप यू कैन कम एंड बी विद अस फॉरएवर वेरी वेरी सून तो आई होप And pray, Ritesh ji, that your father can come and be with you very soon. So happy, happy Father's Day to all the fathers, all the amazing fathers. Agla dedication sune, aur fir hum wapas milte hain.

0: Your sound.
1: Your community.
0: Alive 90.5.
2: Transform your home with Hartwood Floors. Proudly family owned for over 30 years. From solid timber, parquetry, laminate and hybrid flooring to expert resanding and polishing. Discover premium plantation shutters and blinds. Visit our Seven Hills showroom today and experience quality craftsmanship with personalised customer care. Hartwood Floors, where tradition meets innovation and every detail matters. Visit us at www.hartwoodfloors.com.au. स्टेशन स्पॉन्सर
3: क्या आपकी आयु 65 साल या इससे अधिक है इस बार सर्दियों में गंभीर रोगों से अपनी और दूसरों की रक्षा करने के लिए टीकाकरण करवाएं आपके लिए कौन सा टीका सही है इसके बारे में अपने जीपी या फार्मासिस्ट से बात करें
1: Alive 90.5
4: नमस्ते और आपका स्वागत है वापस इंडिया कनेक्ट में मेरे वीना शशि कुमार के साथ और मेरा ऑलमोस्ट बाय बाय बोलने का वक्त आ चुका है लेकिन आज इतने जो ब्यूटीफुल मैसेजेस आए थे ये सारे सुन के दिल खुश हो गया थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल दीज मैसेजेस एंड होपफुली फॉर द नेक्स्ट ईयर वी विल हैव मोर मैसेजेस दैट विल कम थ्रू एक समझने की बात ये है कि हमारे माँ बाप जो हमारे पहले पहले गुरु होते हैं लाइफ का जो पहला लेसन चलना पहला जो बात करना ये सारा हम उनसे सीखते हैं बट जो हमारे क्लासरूम के जो टीचर्स होते हैं वो हमारे होराइजन्स को हमारी पर्सपेक्टिव्स को चेंज करते हैं और हमें क्वेश्चन करना सिखाते हैं हमें सोचना सिखाते हैं तो ये दोनों ही हमारे लाइफ में इररिप्लेसेबल हैं ये दोनों रोल्स इतने इम्पोर्टेंट हैं मैं बता नहीं सकती एक हमारा जो फाउंडेशन बिल्ड करता है और दूसरा हमें उड़ना सिखाता है तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में और दोनों को बड़ा बड़ा सल्यूट एंड थैंक यू टू ऑल द टीचर्स हु आर देयर हु आर लाइटिंग लैंप्स ऑफ नॉलेज एंड इक्वली बिग थैंक यू टू ऑल द फादर्स हु आर द साइलेंट सपोर्टर्स आपको मेरी तरफ से इंडिया कनेक्ट की तरफ से और अलाइव 90.5 की तरफ से Happy Teachers Day and